की सतह है। एडी गूढ़ी नींद आई है, एक मेरी पासा भी नहीं पाई। निरंकार ने वडेरी अवस्था इको एक पुत जिता है, पर उसको कोई ना कोई रोग लगा ही। कोई उसको चला कहना है, कोई दीवाना कहना, कोई बावला कहना। मैं चुप कर गया। मैं खामोश हो गया। लोकां दे बच्चे खेल दे हैं, पर मेरा लाल कदे भी नहीं खेल। होर बच्चे माता पिता तो आके चीजा मंगते, पर मेरे नानक ने मेरे को कदे भी कुछ नहीं। तीन दिन हो गए हैं।

याद नहीं खाते, पता नहीं कीड़ा रोग अंदर जाके सोता है। तीन दिन तू मेरा लाल भोजन पाया है, जे धन गुरु नानक पातशाह जी ने भोजन नहीं सके ता ममता भी मारी हुई मां माता तृप्ता रहे भी मूच बुरकी नहीं पाई। जिस मां का पुत भुखा सो जाए उस मां नू नींद नहीं दी, पुत सो गया है मां जाके उठा दी, काका भुखा क्यों सो गया, एक बुरकी तो बोझ पाए मां दी आंदरा ठर जाए। बच्चा रज के प्रसाद छक लवे मां पहले रज, ते मां का प्यार माता प्रीत करे पुत, माता तृप्त इना करना इन्हों विचार क्योंकि माता तृप्ता हजूर न पुत्र ही सुन। गुरु नानक एक और वेखण वाली वखो वक, तृप्ता ने जाने सुत कालू ने जाने पुत, लालू भतीजा जाने मूले जाने के जवाई, चंदो रानी जाने सरबंधी, जय राम साला जाने हैं पर बेबे नानकी ने जाने हैं रब रूप मेरो पर। श्री चंद लक्ष्मी दास ए जानत निज बाप कर, पराए बुलार को प्रतीत भली आई है, श्री गुरु अंगद साहब ए जानत अकाल रूप ते मूर्खों ने जाने हैं गुरु नानक को, जिन्हां नूं पावना दी रोशनी दी जिन्हां नूं भावना दी लाइट नहीं मिली उन्होंने मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी नूं पुराई है। भावना सब तो वड्डी चीज, जितने तक सानू अपने गुरु ते पूर्ण विश्वास नहीं आएगा उतने तक अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तस्मर, विश्वास ही वड्डी चीज, विश्वास ही सब तो वड्डी चीज। असि कई बार आके गुरुद्वारे आके गुरु साहब के मत्था भी टेक लिया, पर मत्था टेक के भी सानू पूर्ण विश्वास नहीं आता। ये विश्वास आ जाए तो हुक्म क्यों ना मनी, हुक्म नहीं मन, मत्था जरूर टेक दे पर हुक्म मत्था टेके है गुरु, मत्था तो तेरे के टेकांगे पर तेरा हुक्म नहीं मन। ये हुक्म नहीं मनिया ता जीवन परवान नहीं, ये मत्था टेक दिता है फिर पिछे की रह गया, ये मत्था टेकिया है तन गुरु का हो गया, फिर जो गुरु का हुक्म है ठीक, ये गुरु का हुक्म है रहनी रहे सोई सिख मेरा सतमच।

हा था नाम जपो तो कटिए फासा, ए समा वार वार हाथ नहीं चढ़ना। नाम जपया जाए ते फाई कटी जा सकती है, फिर आमन जान न होई, एका एक जपो जप सोई। जप जपना ते एक दा जप जपो, ओ जपया फिर वार वार आउना जाना न होवेगा। करो कृपा प्रभ करने हारे, मेल लेहो नानक बेचारे। हे करन हार प्रभु बख्शिश करो कृपा करो। सिख धर्म दा मूल सिद्धांत इस पंक्ति दे विच आ गया, एक कर्ज करके मैं समाप्त करांगा। सिख करदा सब कुछ है, पर एक कदी नहीं कहिंदा कि मैं करदा। अंत अरदास विच जुड़े रहने हैं, आपनू पता है। सवेरे उठदे ने गुरु के लाल इशनान करनगे, श्री गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश होवेगा, संगतां आउणगियां, कीर्तन होवेगा, कथा होवेगी, कोई पाठ रखे है भोग पवेगा। पर सब तो आखरी कर्म केड़ा सी करदे हैं संगत विच, तुहानू पता है, नित करदे हो। सब तो आखरी गल है अरदास। सारे कर्म करन तो बाद मगरों करने है अरदास। अरदास क्यों करनी है? इस लई के आखिर मोर अरदास ने लाउणी है। ते अरदास च असी की करने हैं? हाथ जोड़ के खलोते हुन्ने हैं जाचक बन के। किन्नी भेटा रखी है किसे ने कोई याद नहीं। हुण ते बच्चे हैं, किन्ना कोई पढ़िया, कोई छोटा है वड्डा है कोई याद नहीं। अरदास दे विच सब कुछ भुल के एक बच्चे वांगू खलो जाण, जिवें बच्चे नूं अपने ज्ञान दा कोई गुमान नहीं और बच्चियां नूं हंकार कोई नहीं। एक बार सारे आखो सतनाम। क्यों नहीं हंकार? किसे ते अजे आधारित ने। उन्हां नूं माण फखर जरूर है कि मेरी माता है, मेरा पिता है, लोड़ वेले मैनू मिल जाएगा। पर बच्चे नूं हंकार कोई नहीं, मैं मेरी अजे तक कोई नहीं। जदों अरदास च खलोना, यह फखर जरूर रखना कि मेरे सिर ते कोई है। पर यह गुमान नहीं हुंदा सिख नूं उस वेले मेरा कुछ है, सिर ते है, दाता है, मैं जाचक बन के खलोता। खाली हथ खलोता, यतन करने हैं ना कि खाली हथ गुरु दे सामने हथ जोड़ के खलोइए। असी है ही खाली हथ, दात कोई है ते दाते दे हथ विच। इंज प्रतीत करना जेड़ी मेरे करदात है भी दाते दे हथ विच ही है, उसे दे हथ विच। असी जदों अरदास करने हैं, पातशाह सब कुछ तेरी मेहर नाल मिलिया है, से सब कुछ तेरी मेहर नाल मिलना है। जो दिता है अज तक तू दिता है, जो देवेगा अज तक तो बाद वो तू देवेगा। जो तू दिता है वो बहुत है, मेरी झोली छोटी है, तू पाया बहुत है, भरपूर कर दिता है, मेरी इनी योग्यता किथे। गुरमुख दे लक्षण ये ने कि मैं जो जपया तू जपाया, मैं इन्ने जोगा किथे है। मैं अज तेरा नाम लै रहे हैं, हो सकता मैं अपराधी हुंदा, मैं कुछ होर बन गया हुंदा, सब तेरी मेहर, सब तेरी बख्शिश। इस गल नूं सदा याद रखना, जिन्नियां वड्याईयां मिलियां ने वह दाते दियां ने। ए मन हर जी त्याए, तू एक मन एक चित पाए, हर कियां सदा सदा वड्याईयां, दे न पछोताए। जिन्ने शब्द मैं आखे ने तुहाडे सामने गुरदेव ने जो अखवाया, अंत च बेनती करा, मुबारक है सानू सारिया नूं दिवाली। जेकर नाम दा दीवा हिरदे विच जग जाए, पर उपकारी जीवन बन जाए, बंधना तो मुक्त हो सकीए, इन्ने शब्द अज प्रवान करने। फुलां दी खिमा गुरु पातशाह दी मत अनुसार कोई सुनिया होवे जरूर हिरदे च धारण करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

निर्मूल कीरा आनंद गुणी जगीरा अनहद पाणी पूंजी संतन हथ राखी मरदानिया के ये समूल वस्तु ना मुल बन इस वस्तु का मुल बन पर उन्होंने कीर्तन का पूरा नाम प्राप्त नहीं होता जिन्होंने कीर्तन रबी दास समझ के इसका आदर सत्कार किया है मरदानिया उन्होंने चोरियां मालिक पर मरदानिया है कि महाराज एक सौ रुपये भी है अरुण कह लगे आप करनी है मरदाने जा वापस दे महाराज अपन बना के मरदाने ने किया सदगुरु मसा मसा माया का मूह वेखे है तुम कहते हो वापस अदूर कह लगे मरदानिया आप किसे चुकी फिरांगे मरदाने ने क्या महाराज तुम थोड़ा चुकनी मरदाना आप ही चुकी फिरेगा इतने जाओगे दो बजे कीर्तन सुनावा हूं थानू कदे नहीं खवागा महाराज भुख लगी अदूर कह लगे जी मरदानी असि मालिक के हुक्म जिथे जावे मालिक आपे प्रबंध करेगा वापस दे पले चटू न बंदे पंछी से दरवेश और जिन्होंने तकवा रब का तिना रिजिक गिरी गांठनी बांधते जवे देवता खाए गोविंद ताके पीछे गिरे मत भूखे ले जाए एक सौ रुपये की थैली वापस दिखती सात राज अंदर होर प्यार आया नौकर नु बुलाया धरका कोई रबी डूर आया है और सौ सुन के मन धरे है प्रसादे का थाल परोसना है मिठाई भी रख लै दुध का दरबार भी भर लै चिट्टा रुमाल पा के पूछा दे मैं दुकान बंद करके आऊंगा हाँ तो उस दादे के दर्शन करना अदरका पहुंच गए सहबा दिल के पदार्था का थाल रखिया मथा टेकिया हजूर ने अभी दृष्टि न तकिया सिर को नजर करम तिरकार नानक नदरी अगर केड़िया झोलियां पर उठिया मस्ती बैठा चाहते इधरों सासराए भी आए अदूर के दर्शन किए मन खरे हाथ जोड़ के किया गरीब नवाज दुनिया उतारने वाले दुनिया दाता देने वाले मेरी झोली की है अदूर कह लगे सासराए की चाहना है साक्षा दुनिया भी दाता सारिया हीरे दाल पन्ने पुखराए अंदौल सोना चांदी सब कुछ है पर गरीब आज सब कुछ होंगे अजे मन का खप्पा पूरा नहीं होया खुश नहीं बने मन नहीं रही मन संतुष्ट नहीं है मन तो संतुष्ट ही नहीं हजूर कह लगे हां सात राय मन का भोजन हो रहा है मन ये नाल नहीं रहना मंत्र मन पदार्था नाल नहीं रहना गरीब आज फिर करो कृपा अदूर ने सोचिया जरा तकिए अंदरों बोलता है कि भर अदूर कह लगे सरसराय तू देरी नाल आया है जेडी दात सी ना वो तेरा नौकर है महाराज फिर मैं अदूर कह लगे जे तो भी दात लेनी है तो नौकर दे चरना से है ऐसी कसौटी इम्तहान देखना से भी अंदर निवरता लेके होवे तो नहीं पर सरसराय का जरा मन रूपी चोलिया सी वो बिल्कुल सफेद अंदर शरदा से प्यार की रो पिया हरी परिवार यह तो मेरा बच्चा है पर जे तुम आखो तो मैं थोड़े कुत्तिया ने पैर चमका सकता तो दास बख्शो जेदे नाल मेरे मन भी सुख दूर हो अगर मैं बख्शी पीती सासरा है जरा नेड़े हो दात मिलन लगी है तुम भी मन करके गिरे हो जाओ बख्शिश होने लगी है हजूर ने सासराए के सिर से देर प्रयास रखिया अभी उसकी की नाल तकिया सासराए जब सतनाम कर हुक्म मस्तक हाथ विचो मार कड़िया बरियाइया सह सुखे नाम नाम की दात जो जो सासराए सिमरन नाल जुड़ा है त्यों त्यों मन सुखी होता है सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोरे तो पीवा मेरा सतगुरु जी तो अज खालस राय दिन झोलियों कर दिखिया मेरे सतगुरु नानक ने क्यों ना पाए अज खास पूर्व भाषी का दिन आखो स्थिति पाए कि खालस राय दिन झोलियां पर गई तो रहमत सूरज की किरण जिथे जाएगी अंधेरे को दूर कर दी जाएगी गुरु की मेह जिथे जाएगी झोलियों पर तो आओ प्यारी आप
अमृत माई पाई, जो अमृत ले रही है।

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना।

जे पूछिए भाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंग है, टिकया उठ पवेगा रोन की केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता एहो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, जीरान कहते ने कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ऐ भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है, फिर क्यों ना

साधजना की अचरज कथा अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटाए अभिमान, साध के संग प्रगटाए सुज्ञान। साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी। साध के संग अगोचर मिलाए, साध के संग सदा प्रफुल्ल। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सबकी देन, साध के संग मनोहर बहन। साध के संग न कथू तावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस से नहीं बैर, साध के संग न भीगा पैर। साध के संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग नहीं हो ताप, साध के संग तजाय सब आप। आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध के संग न कभू तावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लहे, साधु कै संग अजर सह। साध के संग बसाय थान ऊंचे, साधु कै संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम नितान, नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उतारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे। साधु कै संग सोतन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेट तो होत निहाल। साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे। साध के संग इहा हुआ सुहेला, साध संग बिछड़त हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध हृद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मनते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु कै संग कट कट ढीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने ते तब ख्याने। साध की उपमा तै गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूंछ से ऊंची।

एक भय है को ना सके पहचान, नाम जप के राम ते कबीर विच कोई भेदी ना रह गया। बल्कि कबीर जी कहंदे न के कबीर मन निर्मल भया, नाम जप के जदो मन निर्मल हो गया ता मैनू रब लभण दी लोड़ ना पई, रब मेरे मगर मगर तुरिया आया, मैनू लभदा।

ने मेरे समेत अपने ते लेनी गल। महात्मा बुद्ध कहंदे कोई गाहक बने ते सौदा दे ना धक्के नाल की करा हक सटना तू सौ घर गए सारे ने तेनू क्या भी मंदिर किस वास्ते जाने फिर जिस वास्ते जाते उ मिलना ना दाते नू मंगदा ही कोई कोई है। मांगना मांगण नीका हर जस गुरते मांगना अरदास करो। साड़ी खास ओ सच्चे दाते नाल जुड़ जाए। तू विसरे दुख बहुता लगे तू ना विसरी आखो सतना एक तिल प्यारा विसरे रोग वड्डा मन माए। गुरु नानक साहब प्रसन्न होए कहण लगे शुक्र है इहदा गाह की कोई विरला होंदा बाबा बुढ़ा जी 8-9 साल की उम्र सी ते प्रशादा ही लिया सी ना ते सतगुरु ने रसना नू ला के कहा सी तृप्त हो गए हां उन्हें आख्या बाबा आत्मा किवें तृप्त हो गए गारी के आखो सतमा बाबा जी हैरान रह गए कहंदे होए सारी दुनियावी गल्लां करदे तू अध्यात्मक गल उम्र ते छोटी है पर गल्लां बड़े वर्गियां। बाबा बुढ़ा जी बने जितनिया भी बीबियां वीर बैठे हो मेरी भी अरदास करो अपनी भी करो अध्यात्मक मंजिल दे विच भी किथे पिछे हां अगली पौड़ी भी अरदास करया करो इधर भी खोज रख्या करो।

ब्रह्म दी विचार नू जो गाएगा जो सुनेगा चित लाके। कबीर साहब फरमान करते ने किसी किस्म का शंका नहीं, सानू तो शंका बनी है ना, अज तक शंका बनी है, अज तक बाणी विचों रब नजर नहीं आया, क्योंकि शंका बनी हुई है। ते शंका जड़ी है डूब दिंदी है। ते कबीर साहब फरमान करते ने कोई गावै को सुनै हरनामा चित लाए, कोई इस नू चित ला के गा लवे, कोई इस नू चित ला के सुन लवे, ते फिर पता की हुंदा, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पाए, अंत परम गति दी प्राप्ति हो जांदी है। जेड़ा इस बाणी नू चित ला के सुने, जेड़ा इस बाणी नू चित ला के गावे, उस दी परम गति हो जांदी है, मुक्त हो जांदा है, संसार दे विचों बंधना तो रहत हो जांदा, जन्म मरण तो रहत हो जांदा। ते कबीर साहब ने यह भी फुरमान कीता नाल नाल भी दुनिया दे लोगो इस नू गीत ना जानेओ, बाणी नू गीत ना जानेओ, ए ब्रह्म दी विचार है, ए ब्रह्म दी विचार है। ते असी ते इस बाणी नू गीत ही सुन लिया, गीत ही समझ लिया। कन्ना नू आवाज चंगी लगनी चाहिदी है, दिल शीरवी आवाज होवे, दिल कश आवाज होवे, दिल पजीर आवाज होवे, जेड़ी दिल दे उपर असर पांदी चलदी जाए। ते फिर साडे कन्ना नू चंगी लगदी जांदी है, असी फिर उसकी ट्यून नू, असी फिर उसकी मधुर धुन नू सुन सुन कई मोहित हुंदे जाने हैं, पर उसकी विचार नहीं करते, ये गांधी की पई है, कहंदी की पई है, की कह रही है, नहीं सुनिया।

वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशी नाम तो बिना मनुख सखना है इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई सब तो पहला पंज बाणियां दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख विच पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुण जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू लै जाएगा इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो ये बचन अपने पले बनांगे।

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी कि आज जो गद्दी है इस पे ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। साथ संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लेते हुए आ किवें पता लगे कि इस गद्दी ते बैठ दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मगर मगर संगतां, मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ घरां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तो कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां नूं। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां नूं। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन ओ चांदी ते डिग पए, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरां ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे चांदी ते नहीं फिसले ओ सोने दी मोरां वेख के उना दे मन गुरु नानक नूं छड़ गए। सोने दियां मोरां चुक के घरां नूं चले गए। साहब जी फिर खड़ा जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नूं, साडे पिछे आओगे तो कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात झोलियां विच भर के अपने अपने घरां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही झोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो झोलियां भर के घरां नूं चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तो पहले इस मुर्दे नूं खा। पाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई पाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावां, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने पाई लैणे नूं कोल सदया,
اپنے ہردے نال لا کے پائی لینے کو انگ سے لگا کر انگد کر دیا، انگد تھاپیا اور آکھیا لینیا میرے بعد اس گدی دا ہن وارس، اس گدی دا مالک تو ہے۔ اس واسطے بھائی گرو نانک دے در دی سیوا جے کسے نے منو کامنا کر کے کیتی اس دی تا منو کامنا پوریاں ہوئیاں، اور جنہاں نے گرو نانک سچے پاتشاہ دے در دی سیوا نشکامتا دے نال کیتی او گرو نانک دے گھر دے مالک بن گئے۔ اس واسطے صاحب پنجویں پاتشاہ بخشش کر رہے ہیں اور کی کہندے ہیں،